0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

भीगी भागी सी साड़ी सफेद में, ऐसा लगे जैसे ऊपर से सीधे दिल में आई है। आज तो ऊपर वाले पे मानने को जी कर रहा है, इकलौती हो तुम, ना कोई दूसरी बनाई है।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
2: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
1: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स।

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही advertise कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 020-8574-7777 पर call कीजिए.
0: Sunrise Hits.

0: This is Breakfast on Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं. एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे. आज तक यही झूठ कहा था तुमसे. चलो अब सच बता देते हैं.

0: सनराइज हिट्स।
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीएस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स sales team today on 020-8574-7777.
0: Sunrise Hits.
4: The holiday playlist song of the hour with Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours का experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

द हॉलिडे प्लेलिस्ट सॉन्ग ऑफ द आवर विद स्टार टूर्स। चाहे यूरोप हो या दुनिया का कोई भी कोना, हर ट्रिप देता है वो स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk। Artist of the week with Chimin Foods. Enjoy the yummiest flavors in potato chips like Mexican chili, masala, tomato and salted. Chimin Foods, the ethnic taste of India.

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन्स फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज सनराइज हिट्स द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits. The holiday playlist song of the hour with Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris and explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: सनराइज हिट्स।
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स, द यूके'स स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।
3: द हॉलिडे प्लेलिस्ट सॉन्ग ऑफ द आवर विद स्टार टूर्स। 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स, इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स का एक्सपीरियंस अलग होता है। विजिट स्टार टूर्स.co.uk।

द हॉलिडे प्लेलिस्ट सॉन्ग ऑफ द आवर विद स्टार टूअर्स। चाहे यूरोप हो या दुनिया का कोई भी कोना, हर ट्रिप देता है वो स्टार टूअर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk। Artist of the week with Jamin Foods. Make snack time even crunchier with Jamin Grills. Lemon chili pillow, masala wheels, peri peri peri, and so much more. Jamin Foods, the ethnic taste of India.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. A new range of desserts has been released for a limited time only. Try one today. Try all four and vote for your favorite to win a special Pepe's prize. Details in store or on the Pepe's website. Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स sales team today on 020-8574-7777.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. Download the Pepe's app, receive 10% off your first order, give us a review on the app, and you could win a weekly prize of £100 Pepe's voucher to spend at your favourite store.
1: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
2: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
3: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
2: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए।
1: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स sales team today on 020-8574-7777.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: sizzling song of the hour. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in-store or relaxing at home.
1: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
2: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
3: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
2: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए।
1: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. A new range of desserts has been released for a limited time only. Try one today. Try all four and vote for your favorite to win a special Pepe's prize. Details in store or on the Pepe's website. This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स। बैक टू बैक सॉन्ग्स ब्रॉट टू यू बाय साउथल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू दुबई, द फार ईस्ट एंड द यूएसए। डिस्कवर वर्ल्ड वाइड हॉलीडेज एट साउथल ट्रैवल.co.uk।

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. Pepe's has a range of new desserts for a limited time only. All new desserts are 50% off. Pepe's wants you to vote on your favorite. You can win some new Pepe's merchandise. Pepe-licious. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits को सुनने के लिए शुक्रिया. UK के smoothest Asian hits. हमारे sister station Sunrise Retro को सुनना मत भूलिए. On DAB in London, on the Sunrise Radio app or sunriseradio.com पर.
0: Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमीन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 0208574777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स The UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: Sunrise Hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स